अधिमंत्र निवहे रभि मंत्रितेश्च पुण्योदक स्तव शिर स्नपयाम्य जस्र आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थे आलोक्यन्नमखिल मंगलमाननं ते आनंद निर्भर मनाश्च।

जलपुतामल सुवरति भिरे धमान मा दर्शयामि ननुते तपनीय दीपम चोषेश्च भ

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदीका हरेक प्रकारका सामग्रीका लागि प्रसिद्ध सिल्भर स्टेज धर्मपथ।

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

सूत्र समझदारी को सेतु FM अध्यात्म ज्योति सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिप बाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामान को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा।

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चावल स्वाद र संतुष्टि को लागि जय श्री फूड्स प्राली का उत्कृष्ट

0: है इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्रणाली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्रणाली का उत्कृष्ट उत्पादन
0: आदरणीय श्रोता यहाँ अहिले जयश्री फूड्स प्रणाली को प्रायोजन में रहेको कार्यक्रम सर्वमंगलम में श्री महावीर हनुमान जी का कई भजन सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्राली का उत्कृष्ट उत्पादन
0: व्यावसायिक संदेश पछि आदरणीय श्रोता कार्यक्रम सर्वमंगलम मा पुनः स्वागत छ यहाँलाई। जयश्री फूड्स प्राली द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम सर्वमंगलम मा यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ श्री महावीर हनुमान जी का केही भजनहरू।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320411 98020 76888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।
5: वन ओ फोर एट

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई भी सदैव।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: तुझ

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनी सूट,
4: अनि मलाई

0: रसा बेल चुच्चे पाकी
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: सुप्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ, फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। और ये आया पायदान नंबर 30 पर फिल्म हरिश्चंद्र तारामती का वो एक ही सीधा सादा संगीत जिसका जिक्र मैंने एलपी के नाम के साथ यानी लक्ष्मी प्यारे के नाम के साथ अभी कुछ देर पहले किया था।

उस साल की हिट पायदान नंबर 29 पर एक हसीना को देखकर चांद ऐसे शर्माया कि उभरी दूर की आवाज।

गीतकार संगीतकार वही थे जिन्होंने हमें चौदहवीं का चांदो वाला खूबसूरत गीत दिया था, यानी रवि और शकील बदायूनी। और वही जोड़ा 1964 की पायदान नंबर 28 पर भी चमका, फिल्म थी जिंदगी।

0: फिल्म जिंदगी के डायरेक्टर थे रामानंद सागर और फिल्म के सबसे सीनियर एक्टर थे पृथ्वीराज कपूर साहब, जिनकी मदद से ही सागर साहब ने फिल्मों में शोहरत पाने का पहला कदम रखा था। इसके बारे में सागर साहब ने एक इंटरव्यू में मुझे बताया था।
1: पृथ्वीराज जी मेरे दोस्त थे, यहाँ आने से पहले वो मेरी किताब में पढ़ चुके थे
0: जी,
1: और मैं उनका दिलदादा था, तो उन्होंने मदद करनी चाही
0: जी,
1: तो मैंने कहा कि मुझे कोशिश कर लेने दो।
0: अच्छा,
1: पृथ्वीराज जी ने फिर मुझे एक कहा कि मेरे लिए एक प्ले लिख दो, एक ड्रामा लिख दो।
0: कौन सा प्ले था वो?
1: कलाकार। वहां मेरी राज साहब से मुलाकात हो गई। वो एक किसी अच्छी कहानी की तलाश में थे, एक पिक्चर बनाना चाहते थे, बरसात। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास कोई कहानी है? तो मेरे पास एक नावल था जो मैं लिखना चाहता था, उसका खाका तैयार था 30-40 पेज का। मैंने उनको सुनाया कि एक आइडिया है ये, जो उनको बहुत पसंद आया।
0: और उस पर हिट फिल्म बनी बरसात, जिसके जरिए राज कपूर के करीब आ गए रामानंद सागर। और साहब 1964 के बाद तो रामानंद सागर साहब की कामयाबियों का झंडा बस ऊंचा ही ऊंचा चढ़ता रहा। पहले उनकी अपनी फिल्मों में और फिर टीवी सीरियल रामायण के जरिए। खैर, वो तो बाद की बात है, अभी तो ये पूछिए कि 1964 के पायदान नंबर 27 पर कौन साहब सवार थे।
2: मुझे कहते हैं, मुझे

ये फिल्म थी दूल्हा दुल्हन, जिसके संगीत का शंकर जयकिशन ने तो उस साल कमाल ही कर दिया था साहब। गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी की 32 पायदानों में से 13 पायदानों पर उन्हीं की धुनें थी, और उनके पीछे पीछे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला जोड़ा भी लोकप्रियता की रेस में दौड़ने लगा था, अपने जैसे सारे नए नौजवानों का हौसला बढ़ाते हुए और उन्हें पायदान नंबर 26 पर दोस्ती का गीत सुनाते हुए।

0: दोस्तों, पिछले पैक के वॉल्यूम नंबर 19 में जब फिल्म जंगली के जरिए सायरा बानू की एंट्री फिल्मों में जो हुई थी उसका जिक्र हुआ था, तब मैं जंगली के बड़े मशहूर डायलॉग राइटर आगा जानी कश्मीरी साहब की आवाज भी आपको सुनवाना चाहता था, मगर मुझे उनके इंटरव्यू का वो टेप वक्त पर मिला नहीं, अब जाकर मिला है। तो जरा सुनिए कि सायरा बानू को डायलॉग बोलना सिखाने में आगा जानी कश्मीरी साहब ने कैसे मदद की।
1: फिल्म अलाया स्टूडियोज में जब जंगली लिखने गया तो क्या देखता हूं कि एक जवान खूबसूरत लड़की नीची नजरें किए मेरी तरफ खिरामा खिरामा बढ़ी चली आ रही है। मैंने कहा, आदाबर रहे। सिर्फ नाजुक सा हाथ उठाकर चांद से माथे पर रखा और कहा, आगा साहब, आप मुझे डायलॉग सिखाएंगे? मैं जंगली की हीरोइन सायरा बानो हूं। मैंने कहा, जरूर। फरमाने लगी, लोग तो कहते हैं कि मैं काम नहीं कर सकती, तस्वीर फ्लॉप हो जाएगी।
0: वो जरा नहीं थी ना आगा साहब, उन्हें कैसे पता चलता कि जिस फिल्म में आगा जानी कश्मीरी साहब का कलम लग जाए वो फ्लॉप कैसे हो सकती है।
1: जंगली रिलीज हुई और सायरा बानो टेरिफिक हिट हुई।
0: भाई, अगर आप आगा जानी कश्मीरी साहब की लिखी हुई या डायलॉग से सवारी हुई फिल्मों के नाम सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। जैसे पुरानी फिल्मों में हुमायूं, अनमोल घड़ी, औरत, अमर वगैरह, और फिर 50 से शुरू होकर आज के वॉल्यूम के साल यानी 1964 के आते आते चोरी चोरी और जंगली के अलावा लव इन शिमला, ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो, गजल, जिद्दी और अप्रैल फूल, जिसका एक और गीत उस साल नंबर 25 पर बजा। और सुनिए उसमें आगा जानी ट्रेंड सायरा बानू ने दो चार शब्द कैसे मजे में बोले थे। और वैसे वो गीत ये था,
2: अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया, अप्रैल फूल बनाया।
0: अरे बाबा, आजकल तो न जाने कैसे कैसे और कितने कितने लोग जनता को अप्रैल फूल बनाने यानी बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, और इससे कितना नुकसान हो रहा है हर तरफ। तो मैं उन सब से कहूंगा कि भाइयों, झूठ फरेब छल कपट छोड़िए, प्रेम का रास्ता पकड़िए, फिर देखिए कि सारी जनता आपको अपने सीने से लगाकर क्या कहती है आपसे।

0: 1964 की गीतमाला वार्षिक पायदान नंबर 24 पर बजा था फिल्म आपकी परछाइयां का ये गीत। इसके संगीतकार मदन मोहन और गीतकार राजा मेहदी अली खान ने मिलकर ऐसे कई बड़े ही जज्बाती गीत रचे थे, लेकिन इन दोनों में हंसी मजाक और छेड़छाड़ का जो धमाकेदार रिश्ता था ना, उसके बारे में सुनिए कि मुझे मदन भैया क्या बता गए थे।
1: अमीन साहब, खाने पकाने का शौक हम दोनों को था, इसलिए रात का खाना इकट्ठे पकाते थे और खाते थे, और उसके बाद काम करते थे
2: जी।
1: रात को जब राजा साहब काम करके चले जाते थे तो मैं देखता था गाना, और सुबह सुबह फिर मैं उनके घर पर पहुंच जाता था।
2: हाँ।
1: और अगर मुझे गाना पसंद ना आता था तो मैं उनकी रसोई में जो एक चिमटा पड़ा हुआ था,
2: चिमटा,
1: वो उठा लेता था। जी हाँ, वही चिमटा उठाकर मैं राजा से कहता कि शाम तक देखो राजा, गाना नहीं हुआ तो ये चिमटा जो है ये तुम्हारे बदन पर बरसेगा।
2: अरे बाप रे, अच्छा।
1: और राजा ने मेरा एक नाम चिमटा मार खान भी रखवा दिया था।
2: चिमटा मार खान?
1: जी हाँ, सब लोग मुझे इस नाम से पुकारते थे।
0: मगर भाई, जब गीतों की बारी आती ना तो मदन और राजा का सारा धूम धड़ाका भावनाओं की गहराई में डूब जाता है।

0: अच्छा दोस्तों, शायद आपके मन की निगाहें इंतजार कर रही होंगी कि आज गीतमाला की छाओं में की अगली प्रतियोगिता यानी अगले कंपटीशन का जिक्र कब आता है। मगर भाई, एक तो विजय किशोर दुबे साहब के चले जाने से मेरा मन कुछ बोझल सा हो गया, और फिर इस पैक में यानी इस पैक के 5 वॉल्यूम्स में आपको सुनवाने के लिए फिल्मी लोगों के अनोखे इंटरव्यूज और निराली यादों का इतना सारा खजाना हाथ लग गया कि प्रतियोगिता का सिलसिला मैंने अगले पैक तक टाल दिया है। और फिर 1964 के छाओं के गीत भी तो बहुत सारे निकल आए हैं, बड़े लाजवाब गीत, ज्यादातर तो बड़े मीठे मधुर मोहब्बत भरे गीत, मगर एक गीत मजेदार मुस्कुराहटों से महकता हुआ
1: फुल गेंद वान मादो नमादो लगत करे जवा में छो दुंग में दोहाई का है चतुर बनत ठिठोरी।

0: मारो लगत कर जवा में चोट, कर जवा में चोट, कर जवा में चोट।
1: मगर साहब हमारे पास टाइम टाइम टाइम कहाँ है कि हम रुकते रुकते रुकते चलें घिसे हुए ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह। और हमें उस साल की छांव भी तो फिर कह रही है कि आओ ना हमारे पास, और अगर ना

बहन और भाइयों, अगर आपने फिल्म का नाम छपे हुए कवर पर देख लिया है तो आपको याद आ गया होगा कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी लाजवाब था, मगर वो भी सालाना प्रोग्राम तक नहीं पहुंचा था। लेकिन बहन और भाइयों, वो मैं आज नहीं सुनवाऊंगा, आइए बढ़ें आगे। उस साल की छांव में एक बहुत प्यारा गीत उस फिल्म का भी छुप गया था, जिसके हीरो थे कॉमेडियन महमूद। मगर अभी अभी मैंने उस फिल्म की संगीत निर्देशिका उषा खन्ना को फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उस फिल्म शबनम में महमूद ने कॉमेडी के साथ साथ रोमांस भी बड़ा तगड़ा किया था। जी हाँ, हमारे महमूद भाई रोमांस में भी तो उस्ताद थे, यानी जिंदगी में भी।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

भाइयों, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी फिल्म में एक दूजे के साथ रोमांटिक रोल करने के बाद हीरो और हीरोइन में प्यार हो गया और फिर दोनों की शादी भी हो गई। एक फिल्म उस साल आई थी शगुन, जिसकी हीरोइन थी हसीन वहीदा रहमान और नए हीरो थे कमल जीत। और शूटिंग के दौरान कमल जीत वहीदा को अपना दिल दे बैठे। भाई मैंने फिल्म शगुन तो देखी नहीं थी, मगर उसके गीत इतने प्यारे थे कि सुनकर किसी का भी प्यार जाग जाए। और इस गीत का तो लगता है कि सीन भी बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही रोमांटिक होगा।

0: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था ना कि फिल्म शगुन के बनते बनते हीरोइन वहीदा रहमान पर नए हीरो कमलजीत फिदा हो गए, मगर आप जानते हैं मैनो भाइयों, उस रोमांस को शादी तक पहुंचने में 10 साल लग गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी देर क्यों लगी है? भाई ये मैं कैसे बताऊं, आप खुद वहीदा रहमान से सुन लीजिए ना।
1: मैं और कमलजीत ने एक फिल्म में काम किया था, वो फिल्म का नाम था शगुन। उसके बाद उन्होंने फिल्म में छोड़कर कनाडा चले गए थे अपने बिजनेस के लिए, मगर हर साल हिंदुस्तान आया करते थे और जब भी आया करते थे मुझसे ज़रूर मिलते थे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मगर शादी से 6 महीने पहले उनको बॉम्बे आना पड़ा और एक साथ 6 महीने उनको रहना पड़ा। उस दौरान में वो अक्सर मिला करते थे मुझसे। एक दिन अचानक आके कहने लगे, देखिए मैं आपको बहुत बरसों से जानता हूँ और मैंने सोचा है कि बड़े शर्मा के कहने लगे। हाँ, मैंने कहा कहिए क्या सोचा है आपने, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये तो अचानक ऐसा प्रपोजल आया, मैं खुद चौंक गई। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोच के कहती हूँ। फिर थोड़े दिन के लिए मैंने सोचा, अपनी बड़ी बहनों से राय ली, अपने दोस्तों से राय ली।

0: फिर मैंने खुद सोचा कि ये एक इंसान है जिसको मैं काफ़ी बरसों से जानती हूँ और वो भी मुझे जानते हैं। फिर मैंने सोचा इससे अच्छा और क्या हो सकता है, तो मैंने हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई।
1: और बहनों और भाइयों, ये शादी बड़ी ही अच्छी तरह 26 साल तक बरकरार रही। आगे चलकर वहीदा और कमलजीत बेंगलोर में आ बसे और दोनों को खुशियां भी मिली, दो प्यारे बच्चे भी हुए। मगर अफसोस के सन 2000 में कमलजीत अपने हसीन पुरबहार संसार को छोड़कर चल बसे। बहरहाल दोस्तों, फिल्म से उभर कर जिंदगी में ढली हुई इस असली दास्तान मोहब्बत के बाद अब फिर बारी शुरू हो रही है 1964 के हिट गीतों।

इटी बेटे, और उस साल गीतमाला की वार्षिक संगीत छिड़ी की अगली पायदान पर जो गजब का गीत बजा, उसके साथ तकदीर ने थोड़ी सी नाइंसाफी जरूर कर ली थी। उन दिनों गीतमाला की हर सालाना हिट परेड में वही गीत बजते थे जो उसी साल ज्यादा बजे हों, वरना अगर ये गीत कुछ हफ्तों के बाद बजना शुरू हुआ होता ना, तो वो अगले साल यानी 1965 का टॉप हिट गीत नंबर 1 या फिर टॉप हिट गीत नंबर 2 बन जाता। कौन सा गीत था वो? फिल्म दोस्ती का।

और उस साल की पायदान नंबर 20 पर एक ऐसे बेमिसाल नए संगीतकार उभरे जिनमें शंकर जयकिशन और ओपी नैयर और लक्ष्मी प्यारे तीनों के मिले जुले रंग का संगम था। सब अफसोस कि उन्हें जरा कम फिल्में मिली मगर हर फिल्म में उन्होंने यादगार तर्जें जरूर दी। नाम था उनका जी एस कोहली और 1964 की वो फिल्म

बहनों और भाइयों, अब जरा दिल थाम कर बैठिए। नंबर 19 पर आने वाली है झलक उस फिल्म के गीत की जिसका नाम मैं पब्लिसिटी के प्रोग्रामों में तालियों के ताल पर यूं अनाउंस किया करता था।

0: बनौर भाइयों, ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी के गाए हुए जोरदार गीत तो आपने बहुत सारे सुने हैं, मगर क्या आपने कभी ये सुना है कि रफी साहब को शब्दों की कैसी सलामी दे गए हैं ओपी नैयर?
1: रफी साहब एक नहायत शरीफ, इतने अच्छे इंसान थे कि जितने अच्छे गायक थे उससे भी ज्यादा अच्छे इंसान थे वो। तो मालिक ने ये बख्शिश जो उनको आवाज में दी, आज तक किसी गायक की आवाज में वो जादू नहीं है, जो खनक उनकी आवाज में है वो वही थे और वही रहेंगे, और दूसरा मोहम्मद रफी पैदा नहीं होगा।
0: और साहब यही हमारे रफी भाई 1964 की पायदान नंबर 18 पर भी गूंजे थे फिल्म लीडर में, जिस फिल्म को इंसिडेंटली डायरेक्ट किया था हमारी हसीन हीरोइन रानी मुखर्जी के पिता राम मुखर्जी ने।

भी आजकल काम के हंगामों ने कुछ ऐसे लड़खड़ा दिया है कि मैं भी कभी कभी चक्कर में आकर गलतियां कर दिया करता हूँ। अब देखिए, अभी अभी मुझे एक खत मिला है दिल्ली में रहने वाले चंदर नवानी साहब का, जो आज भी रेडियो सिलोन के इतने जबरदस्त हमसफर हैं कि अखिल भारतीय रेडियो श्रीलंका संघ भी चलाते हैं और खुद कई बेहतरीन रेडियो प्रोग्राम भी तैयार कर चुके हैं, और ये गीतमाला की छाव में की पिछली प्रतियोगिता के एक विजेता भी रहे। तो साहब, चंदर नवानी ने मुझे लिखकर टोका है कि पिछले पैक में मैंने महबूब खान की फिल्मों में दो नाम गलत बोल दिए, अनोखी अदा को मैंने कह दिया अनोखी रात, और अनिल विश्वास के संगीत से सजी फिल्म रोटी की जगह मैं बोल गया एक ही रास्ता, और हे बाप रे। तो सॉरी सॉरी बहनों भाइयों, और थैंक यू चंदर नवानी साहब कि आपने मेरी भूल को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, और भाई इस सिचुएशन पर तो मुझे बजाना ही पड़ेगा सन 64 की छाओ का वो बड़ा ही खूबसूरत गीत जिसमें और मिसालों के साथ क्षमा और भूल का भी लाजवाब जिक्र था।

भाई 1964 में तो इतने जबरदस्त गीत थे जो एनुअल हिट परेड तक नहीं पहुंच पाए, बस छांव ही में रह गए। सुनवा दूं आपको इनमें से कुछ की छोटी छोटी झलकें, जैसे अभी।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: ओल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ टेलरिंग।
3: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.5।

स्वामी की मृत्यु हुई देखकर समस्त दैत्य सेना वेगपूर्वक इधर उधर भाग गई। देवगण प्रसन्न होकर दुदुबियां बजाने लगे। काशीराज की सेना में विनायक देव की जय गूंज उठी। विजय वाद्य बजने लगे। दिशाएं स्वच्छ हो गई और उन्मुक्त वायु चलने लगी। इंद्र आदि देवगण वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। विमोचिता वयम बंधाद देवांतक कृताद विभो उपेंद्र इव देवेंद्र कार्यम यस्मात कृतमत वया। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हम राक्षस राज देवांतक के बंधन से मुक्त हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने उपेंद्र के समान पराक्रम दिखाया है, इसलिए आप संसार में उपेंद्र भी कहे जाएंगे। अब हम भय रहित रूप से अपने अपने अधिकार का उपभोग करेंगे तथा दीर्घ काल से अवरुद्ध हुए स्वाहाकार और वशटकार के स्वर पूर्वकृत सर्वत्र सुनाई देंगे। स्तुति करने के बाद सभी देवता अपने अपने स्थानों को गए। इंद्रदेव ने स्वर्ग के समस्त असुरों को बाहर खदेड़ कर पुनः देवराज्य की स्थापना की। असुरों में शोक और देवताओं में आनंद व्याप्त हो गया। युवराज विवाह तथा भगवान विनायक देव का जाना। काशीराज और उनके मित्र राजाओं ने भी भगवान विनायक का पूजन और स्तुति की तथा दूसरे दिन उन्होंने सभा में आकर अमात्यों से कहा, अमात्यगण, मैं भगवान विनायक देव को युवराज का विवाह करने के लिए इनके माता पिता से मांग कर लाया था, किंतु बहुत समय तक असुरों के आक्रमण होते रहने के कारण युवराज का विवाह निरंतर टलता रहा और भगवान विनायक को भी इनके माता पिता के पास नहीं लौटा सके। यद्यपि काशी में इनका निवास हमारी सुख समृद्धि और अभ्यता का कारण हो रहा है, तो भी इनके माता पिता को घर ना लौटने के कारण चिंता हो रही होगी, इसलिए हमें शीघ्र ही युवराज का विवाह करके इन्हें यथाशीघ्र इनके निवास स्थान पहुंचा देना चाहिए। सभी सभासदों ने महाराज की बात का समर्थन किया। सर्वत्र युवराज के विवाह के निमंत्रण पत्र भेजे गए। मगधपति भी अपनी कन्या को लेकर वहां आ गए। भगवान विनायक देव ने विवाह कार्य संपन्न कराया। कई दिनों तक हर्षोत्सव मनाया जाता रहा। तदउपरांत सभी आगत जन काशीराज से सम्मानित होकर अपने अपने स्थानों को लौट गए। अब भगवान विनायक का पूजन करके काशीराज ने उनकी आज्ञा चाही। भगवान विनायक बोले, राजन, यह युवराज का विवाह करने के लिए कुछ ही दिनों के लिए आया था, किंतु अब तो बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं। माताजी पिताजी मुझे याद करते होंगे, मुझे भी उनकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए अब शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। भगवान विनायक का आदेश पाकर महाराज ने रथ तैयार करने का आदेश दिया और रथ के आने पर भगवान विनायक के साथ स्वयं भी उस पर सवार हुए। नगर निवासियों को उनके वियोग असहनीय था। वे उनसे कुछ दिन और रहने का आग्रह करने लगे। उन श्रद्धावान भक्तों का अत्यंत आग्रह देखकर भगवान विनायक देव ने समझाया, सुहृदजनों, इस समय तो मुझे जाना ही होगा, किंतु जब कभी आप पर कोई विपत्ति आवे मुझे याद करना, मैं आपकी सहायता करूंगा। मेरी स्वयं की आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं भी यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। न चित्तस्य समाधानम भवेदवे चिंतनेन मे मम मूर्ति नम्रदा कृत्वा पूजयन्तु ग्रहे ग्रहे। यदि आपके चित्त का समाधान मेरी चिंता से ना हो तो मेरी मिट्टी की मूर्तियां बनाकर घर घर में स्थापित करें और उसमें मुझ विनायक की भावना करके भक्ति भावना पूर्वक पूजन करें। लोगों को संतोष हुआ। सभी भगवान विनायक की जय बोलने लगे। उन्होंने रथ की परिक्रमा की। महारानी ने भी अपनी सहेलियों के साथ आकर इनकी अभ्यर्चना की और उसके पश्चात रथ चल पड़ा।
जब तक नेत्रों से ओझल ना हो गया हो तब तक सभी एक टक उधर ही देखते रहे। वायु वेग से चलता हुआ रथ कश्यप आश्रम जा पहुंचा। महाराज और विनायक दोनों उतर कर महर्षि दंपति के चरणों में पड़ गए। राजा को आशीर्वाद देकर उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। काशीराज ने उन्हें असुरों के आक्रमण और भगवान विनायक के पराक्रम की समस्त घटनाएं यथावत सुनाई, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन मुनिवर की आज्ञा लेकर महाराज अपने नगर को लौट आए। भगवान ढूंढीराज गणेश की स्थापना। काशी के घर में भगवान विनायक की मूर्तियां स्थापित की गईं। महाराज ने भी ढूंढीराज गणेश जी के नाम से एक मूर्ति की स्थापना राजभवन में करवाई। उन मूर्तियों के पूजन प्रभाव से घर घर में आनंद छा रहा था। जिसने जो भी कामना की वह पूरी हुई। उधर माता पिता के पास रहते हुए भगवान विनायक देव को कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे। उन्होंने अपने माता पिता से निवेदन किया कि जननी एवं जनक, अपने जिस अभिप्राय से तप करके मेरे प्राकट्य की इच्छा की थी वह कार्य पूर्ण हो चुका है। त्रिलोकी को त्रसित करने वाले समस्त दैत्यों का संहार हो गया है तथा ऋषि विप्रादि निर्भय रूप से यज्ञ आदि कार्यों का संपादन कर रहे हैं। इस प्रकार धरती का भार उतर गया। अब मुझे अपने धाम को जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान विनायक के वचन सुनकर एक बार तो मुनि और उनकी पत्नी अवाक रह गए। फिर कुछ संभल कर महर्षि ने कहा, देव अभी कुछ काल और निवास कीजिए। उन्होंने कहा, अब तो मुझे जाना ही होगा, यहाँ मेरा कोई कार्य शेष नहीं रह गया है। ऋषिवर, माता ने सजल नयन से पूछा, अब कब दर्शन होंगे पुत्र? भगवान विनायक बोले, मेरा दर्शन भवानी मंदिर में पुनः कर सकोगी माता। और यह कहकर विनायक भगवान अदृश्य हो गए। महर्षि ने उनकी अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित की और नित्य प्रति उसकी यथाविधि

करता है। यह सभी कामनाओं को पूर्ण संचित पापों को नष्ट करने वाला है। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

चौथा खंड अध्याय प्रथम उग्रसेन सिंधु का जन्म। त्रेता युग था, मिथिला देश के गंडकी नामक नगर में चक्रपाणी नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कमी नहीं थी, इस कारण राजा तो सुखी थे ही, प्रजा भी सब प्रकार से निर्भय एवं निरोग रहती थी। सदैव अपने राजा की जय जयकार करती रहती थी। परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ दान व्रत अनुष्ठान आदि किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी कि राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए। बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं देता। इसी अवसर पर वह महर्षि शौनक का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, राजन, तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति यहीं हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, पुत्र होगा तो कब? मेरी आयु ही बीती जा रही है मुनिराज, मुझे सब स्पष्ट कहने की कृपा करें। शौनक जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान सूर्य को प्रसन्न करना होगा। इसके पश्चात महर्षि ने राजा को सूर्य उपासना का विधान बताया और बोले, इस अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर भगवान सूर्य की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी, फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं रहेगी। यह व्रतानुष्ठान एक मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी देवज्ञ ब्राह्मण को एक दुधारू गाय दी जाए और 100,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर भगवान सूर्य देव की पत्नी सहित 100,000 नमस्कार करना भी आवश्यक है। मुनि चले गए। राजा ने अपनी भार्या के सहित भगवान सूर्य की उपासना आरंभ की। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी उग्रा ने स्वप्न में सूर्य देव को अपने पति के रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातः काल उन्होंने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ। बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव है, किंतु मेरे मन में कोई विकार नहीं आया है, इसलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। रानी चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उनके शरीर का तापमान तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दाह का रूप लेने लगी। इस कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था हुई, तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सह सकने में समर्थ ना थी। अंत में प्राण संकट में जानकर उन्होंने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय में ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो दुख में भर गए, परंतु उग्रा की व्यवस्था जानकर वे कुछ कह ना सके। उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ, वह एक रौद्र बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसके रुदन स्वर से धरती आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा एवं मुख कुरूप थे, केश लाल वर्ण के थे तथा हाथ में त्रिशूल उत्पन्न लिए हुए था वह बालक। उसके कारण समुद्र जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्र देव स्वयं मानव रूप धारण कर और बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के समक्ष उपस्थित हुए।
उन्होंने कहा, राजन, वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है, इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी हर्षित मन से उसे गोद में लेकर दुग्ध पान कराया। उसके नाम सिंधु, उग्रेशन और विप्रसादन रखे गए। वह शीघ्रता से वृद्धि को प्राप्त होने लगा। उग्रेशन का प्रबल प्राकर्म तथा वर की प्राप्ति। उग्रेशन स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बाल्यकाल में ही मनुष्यों से तो क्या, हाथियों से टक्कर लेने वाला। उसने छोटी सी आयु में ना जाने कितने हाथी आदि केवल मुष्टि प्रहार से ही धराशाही कर दिए। ना जाने कितने वृक्ष गिरा दिए गए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष होता था। शीघ्र ही किशोरावस्था को प्राप्त उग्रेशन ने अपने माता पिता से एक दिन में कहा, मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति दी। उन्होंने घोर वन में जाकर एक सरोवर के तट पर तपस्या आरंभ की। वह भूखा प्यासा रहकर घोर तपस्या करने लगा। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करते हुए 2000 वर्ष व्यतीत कर दिए। शुधा, पिपासा, धूप वर्षा आदि सहते सहते सूख कर कांटा हो गए। भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अभीष्ट वर मांगने का आदेश दिया। उन्होंने उनके चरणों में मस्तक रख कर निवेदन किया, प्रभु, मैं सभी देवता मनुष्य आदि को जीत कर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लूं और मेरी मृत्यु कभी ना हो। भगवान सूर्य बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो, इसे कंठ में लगाए रहना। इसके रहते हुए देवता मनुष्य नाग पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन रात्रि प्रभात या सायंकाल कभी भी ना मार सकेगा। जब यह पात्र हट जावेगा तभी अपने अंगुष्ठ के नखाग्र पर करोड़ों ब्रह्मांडों को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में सफल होगे। वरदाता भगवान सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रेशन ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का समाचार सुनाया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया तथा स्वयं तपस्या हेतु वन में चले गए। उग्रेशन के राज्य का विस्तार होना। उग्रेशन ने राज्य होते ही राज्य का विस्तार आरंभ किया और अमात्यों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े समय में ही उन्होंने अनेक राजा वश में कर लिए तथा जिन्होंने सामना किया उनके राज्य छीन लिए गए। इस प्रकार उन्होंने क्रूरता पूर्वक रक्तपान करते और उनके सर्वत्र आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी समस्त देव सेना छिन्न भिन्न हो गई। देवनारियां सतीत्व की रक्षा के लिए पर्वतों की कंदराओं में जा छिपी। उग्रेशन ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए देवराज इंद्र भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान हो स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रेशन ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गए। भगवान ने चक्र चलाया तो उन्होंने मुष्टि प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे चूर चूर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए, फिर वह समझ गए कि यह वर के कारण प्रबल हो रहा है।
इसीलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, असुरराज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव मुझसे कोई अभिष्ट वर मांग लो। वह बोला, देवाधिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे गंडकी नगर में सदैव निवास करें, बस इतना ही वर अपेक्षित है। भगवान श्री हरि ने स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने वैकुंठ की व्यवस्था के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहां एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा, आप चाहें जिन देवताओं के सहित यहाँ सुख पूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभु, आप तो इस मृत्य धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा जगदीश्वर? रमानाथ ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं एवं मरते हैं, वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्य पूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर अपनी विजय गाथा सुनाता रहा, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उसे आशीर्वाद प्रदान करते रहते, परंतु वे यह कभी नहीं पूछते कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी रखना है या नहीं इत्यादि। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया। घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ दान उपासना आदि ना करे, मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबो दी जाएं, अथवा धरती में गहरी गाड़ दी जाएं, उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रेशन मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राज्य भय से सबको वही करना पड़ा जो विद्वान एवं धर्मज्ञ पुरुष, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे। नगर छोड़कर जंगल में चले गए। सर्वज्ञ असुरों का जोर बढ़ गया। मांस मदिरा सेवन, सत्यत्वनाश, चोरी, मिथ्या भाषण, छल कपट आदि की घटनाएं सर्वत्र होने लगी। इस प्रकार जहां देखो वहीं आसुरी कर्म ही दिखाई देते थे। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: FM अध्यात्म ज्योतिका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 9841289820 मोबाइल नम्बर 9841289820 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
3: तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ FM अध्यात्म ज्योति।
4: दूसरा अध्याय देवताओं द्वारा संकष्टी चतुर्थी व्रत करना। उग्रेषण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षस गण के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देव गुरु बृहस्पति ने उपाय बताया, भगवान गजानन का पूजन करो, वे समस्त संकटों को नष्ट करने में समर्थ हैं। संसार के सर्ग पालन और लय में वे ही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए गुरुदेव? यदि पूरी बताने की कृपा करें तो वैसे ही करने को तत्पर हूँ। भगवान बृहस्पति बोले, अब माघ मास का आरंभ ही है, कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथि आ रही है। उसे दिन उनका षोडशो उपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करें तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र ही मार डालेंगे, तब तुम अपने पद को पुनः प्राप्त कर सकोगे। सुर गुरु के आदेशानुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित कर षोडशो उपचार पूजन करने के पश्चात भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की। दीनानाथ दया सिंधो योगी हृत पद्म संस्थितः अनादि मध्य रहित स्वरूपाय नमो नमः। हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे ज्ञान गम्या, आपको नमस्कार है। हे मायातीत भक्तों के अभिष्ट पूर्ण करने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वरद विनायक भगवान प्रकट हुए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले, मूषक पर सवार एवं अद्भुत वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा, देवगण, आपके द्वारा किए गए संकष्टी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बोलिए, क्या चाहते हैं? वही मुझसे ले लीजिए। देवता बोले, प्रभो, हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। नाथ, उग्रेषण नामक असुर राज ने हमारा राज्य छीन लिया और भगवान विष्णु को कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव पुनः शीघ्र ही प्राप्त कर ले, ऐसी कृपा कीजिए। गणनायक ने आश्वासन दिया, देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। उग्रेषण का विनाश शीघ्र ही समझो। कैलाश से भगवान शिवजी का पलायन। यह कहकर भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर, माता पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां दैत्यराज के भय से संत्रस्त हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं भगवान शंकर ने तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय प्राप्त होने पर माता पार्वती जी ने अपने नाथ से पूछा, प्रभु, आप तो स्वयं ही सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? यह रहस्य मुझे बताने का कष्ट कीजिए। भगवान शिव जी बोले, प्रिय, अनंत कर्म करने वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हीं गणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए तप करना आवश्यक होता है। माता पार्वती को पुत्र की प्राप्ति, मयूरेश्वर का जन्म। माँ गौरी ने तपस्या की विधि पूछी तो भगवान शिव जी ने उन्हें भगवान गणेश के एकाक्षी मंत्र गंग का उद्देश्य कर उपासना की विधि बताई। तब माता गौरी भी प्रसन्न मन से भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेखनाद्री पर्वत पर गई। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गज वदन मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेषनाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उन गौरवण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए। माता पार्वती ने प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे अभीष्ट नहीं है।

0: से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप अपना अभीष्ट वर मांगिए। माता पार्वती ने प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे अभीष्ट नहीं है और इंद्र आदि लोकपालों को उनके अधिकार की पुनः प्राप्ति भी कराएंगे। इसके पश्चात उस क्षेत्र में माता पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लग्न एवं पांच शुभ लग्नों का साथ था। माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी का षोडश उपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। उन्होंने माता गिरिजा से कहा, मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं। अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्राकट्य हुआ है। माँ गिरिजा बोली, महामहिमामय, अपने इस विराट रूप को छोड़कर मुझे पुत्र सुख दो। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बाल रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, तीन नेत्र, छह भुजाएं, विशाल वक्ष स्थल, दर्शनीय मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश, कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्जवल गौर वर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोगों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। भगवान शिवजी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान दिए। माता पार्वती ने उन्हें दुग्धपान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषी गण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण, विनायक, गणेश या गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इनके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्यंभावी है। उग्रेशण का चिंतित होना। उग्रेशण के गुप्तचरों ने उसे समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंडकारण्य के त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेका अनेक ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव पत्नी माता पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है जिसके विषय में ज्योतिषियों का कहना है कि वह असुरों का संहार करेगा। दैत्यराज ने कहा, कहां मैं इतना विशाल काय और महाबली तथा कहां वह छोटा सा नवजात शिशु, एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध कैसे कर सकता है। तभी उसने आकाशवाणी सुनी, दैत्यराज, तेरा काल समीप है। तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण कर लिया है। मिथ्या अभिमान छोड़कर उनकी शरण ले ले। अमात्यों ने कहा, त्रिभुवननाथ, आपको अमर रहने का वर प्राप्त है, इसीलिए चिंता कैसी। आकाशवाणी से इस प्रकार कहलवाना देवताओं का षड्यंत्र मात्र प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते ही उस बालक को मार डालें, जिससे आप निश्चिंत हो सकें। उग्रेशण ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यही करना होगा। शत्रु बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है, बाद में वह प्रबल हो सकता है। असुर राज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य की गिरी कंदराओं में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया। वे वहां की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कता पूर्वक ध्यान रखने लगे। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।
1: पहले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

तीसरा अध्याय गृध्रासुर का मारा जाना। एक दिन एक असुर ने गृध्र का रूप बनाया, कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास जा पहुंचा। उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उनके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई नहीं है, तो सहसा उन्हें अपनी भयंकर एवं विशाल चोंच में दबाकर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर उड़ चला। तभी किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आईं, तो उन्होंने पुत्र को कहीं ना देखा। इससे हे गणेश पुकारती हुई व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगी। आकाश में उड़ते हुए गृध्रासुर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने माता की पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर मुष्टि प्रहार कर बैठे। बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वह धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख में बैठे रहे। माता ने गृध्र सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरते देखा तो उस ओर दौड़ पड़े। इतने में ही राक्षस धराशायी हो गया और माता पार्वती जी ने तुरंत ही भगवान गणेश जी को उनकी चोंच से निकाल कर अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। शेमासुर एवं कुशलासुर का मारा जाना। शेम और कुशल नाम के दो असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देखकर आश्रम में घुस आए, किंतु माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर दबे पाव एक कोने में जा छिपे। तब माता उन्हें पालने में लिटाकर किसी कारणवश बाहर चली गईं। तब दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी भगवान गणेश जी ने अपने पांव चलाए तथा लीला पूर्वक एक एक पदाघात दोनों पर कर बैठे। बस एक एक बार में ही दोनों असुर दूर जाकर इतने जोर से गिरे कि उनकी हड्डी पसलियों का ही चूर्ण हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त वमन करके शांत हो चुके थे। माता आई तो यह दृश्य देखकर अवाक रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि यह दोनों यहाँ किस प्रकार आए और कैसे मारे गए। माता पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर उठाकर सुदूर अरण्य में फेंक दें। क्रूर नामक असुर की मृत्यु। तीन राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु बालक का बाल बांका नहीं हुआ। इससे असुरों में शंका तो उत्पन्न हो गई थी कि बालक में कोई विशेषता अवश्य है, फिर भी वे उसकी विशेष सामर्थ्य से अपरिचित ही थे, अतः मारने के अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नामक एक असुर अत्यंत ही क्रूर था। उसे यथा नाम तथा गुण कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। एक दिन उसका भी काल खींच ले गया उसे गौरी नंदन गणेश के पास। वह माता पार्वती जी मंदिर में पूजन करने गई थी और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। उन्होंने सोचा इससे अच्छा अवसर और कब आएगा, वह भी एक मुनि बालक का रूप बनाकर उनके साथ खेलने लगा। गणपति जी को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह मूड उस गूढ़ हंसी का अर्थ ना समझ सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केश खींचता। आरंभ में तो भगवान गणेश जी ने उसका अधिक प्रतिरोध नहीं किया, किंतु जब असुरों के आघातों में प्रबलता आने लगी तब उन्होंने उसे पकड़कर बलपूर्वक गला दबा दिया। मंदिर से बाहर निकलती हुई माता गौरी ने पुत्र की यह चेष्टा देखी तो आशंकित हो उठी कि यह मुनि कुमार का गला अधिक ना दबा दे, इसीलिए उसे बचाने को दौड़ पड़ी। किंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह छद्म वेश छोड़कर अपने असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिर चुका था। माता पार्वती जी ने उसे देखकर अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को उठाकर गोद में ले लिया। व्योमासुर वध। यह असुर झंझावात का रूप रखने में सिद्ध हस्त था, इसीलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था।
वह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या क्षेत्र में रह रहा था। एक दिन भगवान गणेश जी का उपवेशन संस्कार होना था। माता पार्वती जी के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए और तब आदि देव गणाध्यक्ष का पूजन पुण्य वाचन कार्य संपन्न हुआ। उस समय सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर इन श्री मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। तदउपरांत ऋषि विप्र आदि ने उन्हें आशीर्वाद दिए। यही अवसर व्योमासुर ने अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसे हिलाने लगा तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे झंझावात का रूप ले लिया। प्रबल आंधी के कारण किसी को कुछ भी दिखाई ना देता था। उसी समय उस असुर ने भगवान गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयत्न किया, किंतु भगवान गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से वह स्वयं ही शत विशत होकर गिर पड़ा। आंधी का वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। तभी भयातुरा माता पार्वती जी ने अपने पुत्र को अंक में ले लिया और दुग्धपान कराने लगी। सभी उपस्थित देवता और ऋषि गण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे। राक्षसी शत महिषा का वध। व्योमासुर की एक विकराल मुख वाली बहन थी। उसका समस्त शरीर ही भयंकर एवं विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया है तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगी, इसलिए 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और माता पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर बैठ गई। माता पार्वती जी ने उसे कोई देवकन्या समझा, इसलिए बड़ा सत्कार किया। भोजन आदि से संतुष्ट कर उसे रात्रि में अपने ही पास सुलाया, परंतु भगवान गणेश जी उसकी समस्त गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे। माता पार्वती जी को घोर निद्रा में पड़ी देखकर वह उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी। तभी सहसा उन्होंने उस राक्षसी के कान नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु छोड़ने की अपेक्षा पकड़ बढ़ती गई। पर्वत के समान दबाव से छटपटाती हुई राक्षसी चित्कार कर उठी। उसे सुनकर माता पार्वती जी ही नहीं, अन्यत्र सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़ी चली आईं। उन सब ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बालक ने राक्षसी के नाक कान इतनी तीव्रता से मसले कि प्राणों के साथ ही शरीर से पृथक हो गए। अब उसका आसुरी रूप प्रत्यक्ष हो चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भयाक्रांत हो उठी। माता बालक को उठाकर दुग्धपान कराने लगी। और भी अनेक राक्षसों का वध। तदउपरांत एक एक करके अनेक असुर वहां आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इस प्रकार कर्मठ, तल्प, दुदुम्भी, अजगर, शलभ, नुतुर, मत्स्य, शैल, कर्दम आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी यह लीला समाप्त की वे सभी भगवान के हाथ से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे। भगवान को मारने के विचार से भी आकर उन्हीं के धाम को प्राप्त हो गए थे। धीरे धीरे मयूरेश 5 वर्ष के हो गए। तरह तरह की बाल क्रीड़ाएं। अब माता पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। माता पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थीं और वे सुधा आतुर हुए सोचते थे कि भोजन कैसे और कहां से प्राप्त हो। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया तब वे महर्षि गौतम की कुटी पर जा पहुंचे। वह कुटी बहुत निकट ही थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश उठकर पाकशाला से बाहर निकल आई। अवसर देखकर भगवान गणेश जी ने पाकशाला में जाकर
पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथी बालकों ने पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, भोजन है, भूख लगी है, इसीलिए उठा लाया हूँ। खेलते हुए बहुत देर हो गई, पहले खा लें तब पुनः खेलेंगे। यह कहकर उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बांट दिया तथा अपना भाग स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर पुनः खेलना आरंभ कर दिया। इधर ऋषि पत्नी ने पाकशाला में जाकर देखा कि अन्न पात्र नहीं है। वे विस्मित चित्त से महर्षि के पास जाकर बोले, नाथ, पाकशाला में अन्न पात्र नहीं है, अभी बलि वैश्वदेव कर्म भी नहीं हो पाया।